0: नॉट लिसनिंग
1: टू यू। दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: आई एम नॉट विद
1: यू। तो इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।